0: अनमोल विचार।
1: कहा गया है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य वो आदत है जो हमारी क्षमता, समय और अवसर तीनों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति आज का कार्य कल पर टालता है, वो सफलता से स्वयं को दूर कर लेता है। इसके विपरीत परिश्रम, अनुशासन और समय का सदुपयोग हमें निरंतर प्रगति की ओर ले जाता है। आलस्य को त्याग कर समय का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें।

ये था आज का अनमोल विचार। श्रोताओं, आरंभ होता है भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृवंदना।

मात्र वंदना सुनने के पश्चात श्रोताओं कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको ये पहला भजन अनुपमा देश पांडे के स्वर में।

0: चंद्रु आत्मा के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 5:55 हुए हैं। श्रोता अब आप सुनेंगे कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है पशुओं में गर्भपात के कारण एवं निवारण। हमारे इन द्वीपों के पशुपालकों को अनेकों बार ये शिकायत करते हुए पाया गया है कि उनके पशु

0: भूमि गर्भकाल के पूर्ण होने से पूर्व ही गर्भपात हो जाता है। गर्भपात से पशु कमजोर हो जाते हैं और समय से पहले ही दूध देना बंद कर देते हैं। अतः यह बहुत जरूरी है कि पशुपालकों को गर्भपात के ठीक ठीक कारणों एवं इनसे बचने के उपायों के बारे में जानकारी हो। हमारे इन द्वीपों में गर्भपात मुख्यतः ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी के कारण होता है। यदि आपके गांव में 5% से अधिक पशुओं को एक वर्ष में गर्भपात हो रहा है तो समझ लीजिए कि गांव के पशुओं में ब्रूसेलोसिस हो गया है। इस बीमारी में गर्भपात गर्भकाल के सदैव 6 से 7 महीने बाद होता है। उस समय पशु इतना कमजोर हो जाता है कि वो कई महीनों तक गर्मी में नहीं आ पाता। किसी भी पशु में गर्भपात होना पशुपालक के लिए हर तरह से नुकसानदायक होता है। गर्भपात होने से होने वाले बच्चे का नुकसान तो होता ही है, साथ ही गायों के दूध देने की जो क्षमता होती है वो भी घट जाती है। इससे पशुओं में 2 प्रसव के बीच का समय बढ़ जाता है और कभी कभी तो पशु बांझ तक हो जाते हैं। पशुओं में जब 2 प्रसव के बीच का समय बढ़ता है तो इससे पशुपालन की आर्थिकी गड़बड़ा जाती है और आर्थिक तौर पर जो फायदा पशुपालन से होना चाहिए वो पशुपालक को नहीं हो पाता। यदि गर्भपात ब्रूसेलोसिस जैसी संक्रामक बीमारी की वजह से हुआ है तो अन्य सभी गाभिन पशुओं को गर्भपात का खतरा हो सकता है तथा ऐसे पशुओं के साथ रहने और उनका दूध पीने से मनुष्यों को भी इस बीमारी का खतरा हो जाता है। किसान भाइयों, इसलिए गर्भपात से बचाव के लिए कुछ एक बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी नया पशु खरीदते समय उसके पहले ब्यान व प्रसव के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल कर लें। यदि उसे पहले गर्भपात हुआ है तो बिना पशु चिकित्सक की राय के उसे नहीं खरीदना चाहिए। यदि गांव में किसी नए पशु के आ जाने के बाद अन्य पशुओं में गर्भपात होने लगा है तो ऐसे पशु को तुरंत हटवाकर शेष पशुओं की अतिशीघ्र जांच करवा लें। जहां तक हो सके अपने पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा ही गाभिन कराएं, क्योंकि ऐसे केंद्रों में वीर्य केवल स्वस्थ व संक्रामक बीमारियों से रहित पशुओं से एकत्रित किया जाता है। अगर प्राकृतिक ढंग से आप अपने पशुओं को गाभिन करवाते हैं तो ऐसे में जिस पशु का इस्तेमाल करते हैं उसे भी ये छूत की बीमारी नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों, पशु जब गाभिन होने की अवस्था में आते हैं तो ऐसे में उनके मादा जनन अंगों की जांच करवा लेनी चाहिए और किसी प्रकार की बीमारी के प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। गाभिन पशु को गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में अधिक दौड़ाना या परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एकांत व साफ स्थान पर बांधना चाहिए। 4-5 महीने की गर्भावस्था से पशु के आहार का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन पशुओं की लगातार 2 बार गर्भ गिर जाए उनकी फौरन ही पशु चिकित्सक से पूर्ण जांच एवं इलाज करवानी चाहिए।
1: श्रोताओ, अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौती

0: At Egypt 3-2 in Atlanta, Argentina was trailing by 2 goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Romero scoring the first goal at 79 minutes. The equaliser came through Messi in 83 minutes while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 International at Trent Bridge in Nottingham last night, chasing a target of 202 runs set by England. India lost wickets in quick succession and were all out with a paltry score of 76 in 11.4 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। श्रोताओ, लीजिए सुनिए जलियानो का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानीचंगा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी हडबे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए 10 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान अगले दिन शनिवार 11 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल 9 तारीख को सुबह 6:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कालीघाट शुक्रवार 10 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान अगली सुबह 11 तारीख को सुबह 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान चौरा कार्निकोबार चौरा तरेसा कचाल नानकौरी माकाचुआ और आफ्रा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान रविवार 12 तारीख को रात 9 बजे कैमल बे से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से चलकर स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान की वापसी अगली सुबह प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 9 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जलियानों के यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुए। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।

प्रिय श्रोताओं को सुमित का नमस्कार। दोस्तों, वादा केवल एक शब्द नहीं बल्कि विश्वास, अपनापन और रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। जब कोई किसी से वादा करता है तो उसके साथ जुड़ जाती है उम्मीद, भरोसा और उसे निभाने की जिम्मेदारी। दोस्तों, सच्चे रिश्तों की पहचान केवल प्रेम से नहीं होती बल्कि उस प्रेम को निभाने से होती है। किसी से किया गया वादा तभी मायने रखता है जब उसे हर परिस्थिति में निभाने की कोशिश की जाए। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, समय भी बदलता रहता है, लेकिन अगर विश्वास और वादे अटल रहे तो कोई भी रिश्ता कमजोर नहीं पड़ता। यही कारण है कि हमारे समाज में वचन और वादे को हमेशा बहुत सम्मान दिया गया है।

दोस्तों, हर वादा निभ ही जाए ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। कभी परिस्थितियां बदल जाती है, कभी दूरियां बढ़ जाती है, और कभी समय रिश्तों की दिशा ही बदल देता है। लेकिन जब कोई अपना किया हुआ वादा भूल जाता है तो सबसे अधिक तकलीफ उस इंसान को होती है जिसने उस वादे पर अपना विश्वास टिका रखा था। टूटा हुआ वादा केवल शब्दों का टूटना नहीं होता, बल्कि कई बार उससे दिल भी टूट जाते हैं।

प्रिय श्रोताओं, जीवन में कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो हर परिस्थिति में निभाने के लिए किए जाते हैं। चाहे समय कितना भी बदल जाए, चाहे कितना भी मुश्किलें सामने आए, सच्चा इंसान अपने वादे से पीछे नहीं हटता। ऐसे वादे रिश्तों में विश्वास बनाए रखते हैं और जीवन भर साथ निभाने का एहसास देते हैं। जब दो दिल एक दूसरे से वादा करता है तो वह केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि जीवन का संकल्प बन जाता है।

0: दोस्तों, वादा केवल जुबान से कहे गए शब्द नहीं होते, बल्कि उन्हें निभाने का साहस और ईमानदारी ही उनकी असली पहचान होती है। रिश्ते प्रेम से बनते हैं, लेकिन विश्वास और निभाए गए वादों से लंबे समय तक कायम रहते हैं। इसलिए सोच समझकर वादा कीजिए और जब भी करे उसे निभाने का पूरा प्रयास कीजिए। इसी सुंदर संदेश के साथ मैं सुमित आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।
1: धनुष।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आरंभ होता है रामचरित मानस गान।

विभीषण ने नीति की दुहाई देते हुए रावण को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की। माल्यवान ने भी, जो रावण के नाना और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री थे, विभीषण की नीतिवत्ता की अनुशंसा करते हुए रावण को सद्बुद्धि का उपदेश दिया। किंतु रावण ने उन दोनों को मूर्ख बताकर अपनी राजसभा से निकल जाने पर विवश कर दिया।

की चेष्टा की। माल्यवान ने भी, जो रावण के नाना और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री थे, विभीषण की नीतिवत्ता की अनुशंसा करते हुए रावण को सद्बुद्धि का उपदेश दिया, किंतु रावण ने उन दोनों को मूर्ख बताकर अपनी राजसभा से निकल जाने पर विवश कर दिया।

ए हरिहरन और रविंद्र साठे के स्वरों में श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 293वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी व आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कल तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी।

श्रोताओ, अब लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देशरागनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, जिसके तहत कवित्री रोशन आरा दिलबर से आप स्वरचित काव्य पाठ सुन पाएंगे। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे पंकज उदास, आशा भोसले और अशोक खोसला। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने सुनिए सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर हिंदुस्तानी शैली में संजीव अभ्यंकर का गायन आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के तहत। गीत गाता चल फिल्मी गीतों से सजे इस कार्यक्रम का आप लुत्फ उठाएंगे सुबह 10:00। दिन के 11:00 समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक सुनिए दिन के 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसके तहत महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगे वनिता वाणी। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कुछ फिल्मी नगमे सुनवाई जाएंगी। दोपहर 1:10 पर महफिले कव्वाली कार्यक्रम में आप असलम साबरी और साथियों को सुनेंगे। और आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। श्रोता, दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत दोपहर बाद 2:30 पर आप सुनेंगे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स, तथा फिल्मी गीतों से सजा विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो आप सुन पाएंगे दोपहर बाद 3:30 पर। शाम 4:00 हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा किन्मय गांव के सदस्यों द्वारा आप प्रस्तुत गीत सुन पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुनिए शाम 4:30 पर। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीत बहारों की शाम सुनिए शाम 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें एक ही संगीतकार के कुछ गीत सुनवाए जाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:30, जिसमें आप चंद आधुनिक गीत सुनेंगे। कार्यक्रम कृषि जगत की प्रस्तुति होगी शाम 6:00, जिसमें द्वीपों में सहजन फली की खेती विषय पर डॉक्टर विश्वभूषण पांडे से की गई बातचीत आप सुनेंगे। दर्द भरे नगमे सुनिए शाम 6:30 पर। शाम 7:15 पर आप सुन पाएंगे मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जनसूचनाएं। युवा श्रोताओं का समर्पित कार्यक्रम युवाणी में आप गीतों भरी कहानी सुनेंगे शाम 7:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिए रात्रि 8:00 व रात्रि 8:30 पर। रोजगार समाचार तथा रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तथा 9:30 पर विविध भारती मुंबई से रिले प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत आप सुन पाएंगे। श्रोताओं, अभी आप आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। श्रोताओ, लीजिए सुनिए जनसूचनाएं।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई। आज सुबह 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 89% तथा न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:01 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:48।

एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

0: श्रोताओ, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देशरागनी। इसी समय पर FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:30 पर, जिसके तहत कवित्री रोशन आरा दिलबर से स्वरचित काव्य पाठ आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे पंकज उदास, आशा भोसले और अशोक खोसला। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने सुनिए सुबह 9:00। फिल्मी गीतों से सजा एक और कार्यक्रम गीत गाता चला आप सुन पाएंगे सुबह 10:00। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है। पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग की ओर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत प्रशिक्षण के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कर्माटांग और वेबी क्लस्टरों में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती पर

शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सरकार ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया साई के नाम के संगठन के झूठे दावों के बारे में लोगों को सावधान किया है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर सातवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के लिए आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। अधिक जानकारी पोर्टल या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। मंत्रालय ने कहा कि ये पुरस्कार जल समृद्धि भारत के सरकारी दृष्टिकोण को साकार करने में देश भर के राज्यों, जिलों, व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों और प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए हैं। इसका उद्देश्य जनता को जल के महत्व के प्रति जागरूक करना और उन्हें जल उपयोग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य हितधारकों को देश में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत डॉलीगंज स्थित पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में लाइव स्टॉक ग्रीन मैनेजमेंट प्रमोटर पर अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसका उद्देश्य द्वीपों में टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल और जलवायु अनुकूल पशुपालन प्रणाली को बढ़ावा देना है। वर्तमान बैच के लिए केवल 15 उम्मीदवारों की सीटें उपलब्ध हैं। इसके लिए उम्मीदवारों के पास पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन, डेयरी टेक्नोलॉजी में यूजी डिप्लोमा या समकक्ष, या कक्षा 12वीं के बाद पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन, डेयरी टेक्नोलॉजी में 2 वर्षीय डिप्लोमा का द्वितीय वर्ष, या कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 1.5 वर्ष के अनुभव के साथ यूजी प्रमाण पत्र, या 3 वर्ष के अनुभव के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, या 1.5 वर्ष के अनुभव के साथ पिछली प्रासंगिक NSQF लेवल 4.5 योग्यता, या 3 वर्ष के अनुभव के साथ पिछली प्रासंगिक NSQF लेवल 4 योग्यता का होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार अपने बायोडाटा के साथ 17 जुलाई तक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर पाठ्यक्रम के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के हिस्से के रूप में NTPC और राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से पोस्टर मेकिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एक स्वस्थ तंबाकू मुक्त भविष्य को प्रोत्साहित करना था। पोस्टर मेकिंग और निबंध लेखन दोनों प्रतियोगिताओं के लिए विषय आकर्षण का अनावरण निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला था। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने हिस्सा लिया। विजेताओं का चयन उनकी रचनात्मकता, संदेश की स्पष्टता और समग्र प्रभाव के आधार पर किया गया। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 2000, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1500, तृतीय पुरस्कार के रूप में 1200 और 500 रुपये के 2 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन ने कल कदमतला और शांतनु में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर 3 अलग अलग स्थानों पर कुल लगभग 0.190 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आम जनता से सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा न करने और अतिक्रमण के किसी भी मामले की सूचना देने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृषि विभाग मायाबंदर ने यूटी आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र निम्बूडेरा के सहयोग से हाल ही में मायाबंदर के कर्माटांग और वेबी क्लस्टरों में केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। तकनीकी सत्र के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र निम्बूडेरा के प्रमुख डॉ. वाई. रामकृष्ण ने मिट्टी की उर्वरता और दीर्घ

0: कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने में प्राकृतिक खेती की भूमिका के बारे में बताया। इससे पहले उपस्थिति का स्वागत करते हुए माया बंदर की कृषि अधिकारी शमना सलाम ने मिशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर किसानों को प्राकृतिक खेती किट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में किसानों, कृषि सखियों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों सहित 90 हितधारकों ने भाग लिया। सरकार ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया साई नाम के संगठन के झूठे दावों के बारे में लोगों को सावधान किया है। ये संगठन दावा कर रहा है कि उसे युवा मामले और खेल मंत्रालय से मान्यता मिली हुई है। प्रेस सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि ये दावा गलत है और साफ किया गया है कि मंत्रालय ने इस संगठन को कोई मान्यता या संबद्धता नहीं दी है। इसमें यह भी कहा गया है कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फिट इंडिया मूवमेंट से कोई संबंध नहीं है और उसे फिट इंडिया लोगो या ब्रांडिंग का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है। फैक्ट चेक यूनिट ने आगे कहा कि ये संगठन कथित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए खिलाड़ियों के चयन के पत्र, प्रचार सामग्री और विज्ञापन जारी कर रहा है और साथ ही प्रतिभागियों से 1500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस भी ले रहा है। इसने नागरिकों से अपील की है कि वे सावधान रहें और कोई भी पेमेंट करने या ऐसे आयोजनों में भाग लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से ऐसे दावों की पुष्टि कर लें। अंडमान लॉ कॉलेज में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए BA LLB के 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों की अस्थायी सामान्य योग्यता सूची और श्रेणीवार योग्यता सूची वेबसाइट collegeadmission.andamannicobar.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। इसके अलावा सूची कॉलेज के सूचना पट पर भी दर्शा दी गई है। इस संबंध में दावे और आपत्तियां 10 जुलाई शाम 5 बजे तक कॉलेज के ईमेल द्वारा या व्यक्तिगत रूप से कॉलेज कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द डेली टेलीग्राम्स ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल प्रशस्ति पत्र के लिए आवेदन आमंत्रित करने के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। द्वीप समाचार ने मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन द्वारा रंगत तहसील में अतिक्रमण अभियान चलाने के समाचार को प्रमुखता देते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। महिला कांग्रेस कार्यकारी समिति के महिला आरक्षण बिल 2023 को लेकर हुई बैठक के समाचार को अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी में जगह मिली है। इन्फो इंडिया ने सहकारी विभाग द्वारा सहकार से समृद्ध अभियान के साथ 5वां स्थापना दिवस मनाए जाने के समाचार को, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने डिगलीपुर के किसानों की बाढ़ से हुए नुकसान के लिए तुरंत राहत देने के समाचार को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है। पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग की ओर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कर्माटांग और वेबी क्लस्टरों में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सरकार ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया साई नाम के संगठन के झूठे दावों के बारे में लोगों को सावधान किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। श्रोताओ लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागनी।

वेशरागनी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और एकता ही हमारी सबसे बड़ी शान है। हमारे देश को असंख्य सैनिकों के साहस, किसानों की मेहनत और युवाओं ने सींचा है और विश्व भर में हमारे देश भारत का नाम ऊंचा किया। मिट्टी की खुशबू दिल में बसाए रखना, भारत की शान को हमेशा ऊंचा उठाए रखना।

हमारा देश विविधताओं में एकता को दर्शाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, भौगोलिक विविधता और समृद्ध जैव विविधता विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ है बर्फ से ढके हिमालय पर्वत, हरे भरे जंगल, अनेकों नदियाँ, झीलें, झरने और समुद्री सौंदर्य जो देखते ही बनती है, क्योंकि ऐसा देश है मेरा।

श्रोताओ, सौंदर्य से और प्राकृतिक संपदाओं से भरा है हमारा देश, लेकिन इसके गर्भ में समाए हैं सैकड़ों वीर सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यहाँ मिट्टी बया करती है उन वीर और वीरांगनाओं के बलिदान की कहानी, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: नमस्कार और कार्यक्रम में अभिनंदन। बिगड़ी बातें भी पल में बन जाती है, उलझी गांठें भी पल में सुलझ जाती है। एक बार नियत से मुस्कुरा के तो देखे। इस सुविचार के साथ कर रहे हैं कार्यक्रम का आगाज। श्रोताओं, रचनाकार वो होता है जो अपनी सोच और नजरिए को कविता, कहानी, गीत, लेख आदि द्वारा व्यक्त करता है। और कार्यक्रम में सबसे पहले आज हम आपको सुनवा रहे हैं कवित्री रोशन आरा दिलबर की स्वरचित काव्य पाठ।
1: तो पहली गजल पेशे खिदमत है। ये जिंदगी हो जैसे कोई बंद एक गली, ये जिंदगी हो जैसे कोई बंद एक गली, सपने में पर ये देखते खिड़की है एक खुली। ये जिंदगी हो जैसे कोई बंद एक गली, सपने में पर

तो पहली गजल पेशे खिदमत है। ये जिंदगी हो जैसे कोई बंद एक गली, ये जिंदगी हो जैसे कोई बंद एक गली, सपने में पर ये देखते खिड़की है एक खुली। ये जिंदगी हो जैसे कोई बंद एक गली, सपने में पर ये देखते खिड़की है एक खुली। खुशबू चहार सिमत से फैली है आज क्यों, खुशबू चहार सिमत से फैली है आज क्यों, उम्मीद की कहीं कोई शायद खिली कली। इकसर फिरी हवा ने मेरे कान में कहा, इकसर फिरी हवा ने मेरे कान में कहा, सच का न देना साथ तू चढ़ जाएगी बली। इकसर फिरी हवा ने मेरे कान में कहा, सच का न देना साथ तू चढ़ जाएगी बली। हर मोड़ जिंदगी का रहा हादसा मगर, हर मोड़ जिंदगी का रहा हादसा मगर, इस जंग में भी जिंदगी मुझको लगी भली। हर मोड़ जिंदगी का रहा हादसा मगर, इस जंग में भी जिंदगी मुझको लगी भली। और आखिरी शेर है कि नैरंगिये जहां में भी शामिल रही मगर, नैरंगिये जहां में भी शामिल रही मगर, काजल की कोठरी में भी दिलबर रही धुली। नैरंगिये जहां में भी शामिल रही मगर, काजल की कोठरी में भी दिलबर रही धुली। ये जिंदगी हो जैसे कोई बंद एक गली, सपने में पर ये देखते खिड़की है एक खुली। और अगली तख्लीक है एक नज्म जो अंडमान पर है। हिंदुस्तान का ताज मेरा अंडमान है, हिंदुस्तान का ताज मेरा अंडमान है, इंसानियत की एक सदा अंडमान है। हिंदुस्तान का ताज मेरा अंडमान है, इंसानियत की एक सदा अंडमान है। यूं तो मुशाबहत है सभी मुल्क कौम से, यूं तो मुशाबहत है सभी मुल्क कौम से, रखता है फिर भी रंग जुदा अंडमान है। यूं तो मुशाबहत है सभी मुल्क कौम से, रखता है फिर भी रंग जुदा अंडमान है। आला मिसाल कौन है इख्वत तो प्यार की, आला मिसाल कौन है इख्वत तो प्यार की, हर दिल से निकली एक सदा अंडमान है। आला मिसाल कौन है इख्वत तो प्यार की, हर दिल से निकली एक सदा अंडमान है। सरसब्ज वादियां हैं शजर झूमते हुए, सरसब्ज वादियां हैं शजर झूमते हुए, खुश रंग मंजरों से सजा अंडमान है। नासाजगार वक्त में रोशन रहा सदा, नासाजगार वक्त में रोशन रहा सदा, हिम्मत तो हौसलों का दिया अंडमान है। नासाजगार वक्त में रोशन रहा सदा, हिम्मत तो हौसलों का दिया अंडमान है। खामोश एक गवाह फिरंगी के जुल्म का, खामोश एक गवाह फिरंगी के जुल्म का, बनकर निशानेदार खड़ा अंडमान है। मंदिर है सरफरोशों की भारत की लाजिए, मंदिर है सरफरोशों की भारत की लाजिए, तारीख हिंद का ये सिरा अंडमान है, तारीख हिंद का ये सिरा अंडमान है। और आखिरी शेर है कि छोटा है हर लिहाज से ये सच तो है मगर, छोटा है हर लिहाज से ये सच तो है मगर, इंसानियत में सबसे बड़ा अंडमान है। छोटा है हर लिहाज से ये सच तो है मगर, इंसानियत में सबसे बड़ा अंडमान है। हिंदुस्तान का ताज मेरा अंडमान है, इंसानियत की एक सदा अंडमान है। और एक गजल पेशी खिदमत है। इस शराबों के शहर में आदमी है गुमशुदा, इस शराबों के शहर में आदमी है गुमशुदा, यूं सभी जिंदा है लेकिन जिंदगी है गुमशुदा। इस शराबों के शहर में आदमी है गुमशुदा, यूं सभी जिंदा है लेकिन जिंदगी है गुमशुदा। यूं भी देते हैं यहां धोखा सभी ऐ दोस्तों, यूं भी देते हैं यहां धोखा सभी ऐ दोस्तों, लब पे मस्नूई हंसी

0: दिल में खुशी है गुमशुदा। यूं भी देते हैं यहां धोखा सभी ए दोस्तों, लब पे मस्नूई हंसी दिल में खुशी है गुमशुदा। मौलवियों बरहमन के जंग में हम मिट गए, मौलवियों बरहमन के जंग में हम मिट गए, इस सियासी रंग से डरकर रास्ती है गुमशुदा, इस सियासी रंग से डरकर रास्ती है गुमशुदा। मैं किसी सुबह को जागूं और मुझे कुछ यूं लगे, मैं किसी सुबह को जागूं और मुझे कुछ यूं लगे, कत्ल गारत खून नफरत की सदी है गुमशुदा। मैं किसी सुबह को जागूं और मुझे कुछ यूं लगे, कत्ल गारत खून नफरत की सदी है गुमशुदा। इर्तका की दस्त से दुल्हन बनी ये सरजमी, इर्तका की दस्त से दुल्हन बनी है ये जमी, है ये दीदा जेब लेकिन दिलकशी है गुमशुदा। किस कदर मुरझा गया है आदमी इस दौर का, किस कदर मुरझा गया है आदमी इस दौर का, खूब तर चेहरे हैं लेकिन ताजगी है गुमशुदा। किस कदर मुरझा गया है आदमी इस दौर का, खूब तर चेहरे हैं लेकिन ताजगी है गुमशुदा। अपनी कदरों को कभी के अलविदा हम कह चुके, अपनी कदरों को कभी के अलविदा हम कह चुके, अब है गायब अपनापन और दोस्ती है गुमशुदा, अब है गायब अपनापन और दोस्ती है गुमशुदा। और मक्ता हाजिर है कि दिल सुकून से भर गया है देख कर दिलबर तुझे, दिल सुकून से भर गया है देख कर दिलबर तुझे, अज्म की एक रौ है तुझ में बेबसी है गुमशुदा, अज्म की एक रौ है तुझ में बेबसी है गुमशुदा, इस सुराबों के शहर में आदमी है गुमशुदा, यूं सभी जिंदा है लेकिन जिंदगी है गुमशुदा।
1: श्रोता अभी आप कवित्री रोशन आरा दिलबर से स्वरचित काव्य पाठ सुन रहे थे। इन सुंदर कविताओं के बाद कार्यक्रम में का रुख कर रहे हैं अब गीत संगीत की ओर। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाजों में। फिल्म का नाम है सूर्यवंशम। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाज़ों में ये था सूर्यवंशम फिल्म का गीत। गीत लिखा समीर ने तथा इस गीत को संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में कुछ और गीतों के साथ हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले ये अंतराल।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं खेल खेल में फिल्म का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को सुर में ढाला है आरजी बर्मन ने।
2: अरे देख रहे हैं
3: तो देखने दो,
2: जल भी रहे हैं
3: अरे तो जलने दो,
2: खुली सड़क है बाबा
3: तो क्या हुआ भाई।
2: हाँ तो हो जाए
3: हो जाए।

खय्याम के धुन पर बनी ये है साहिर के लिखे शब्द, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है कभी कभी। श्रोताओं, ये है हमारे कार्यक्रम की अंतिम भेंट।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने कभी कभी फिल्म का ये गीत सुना। गीतकार थे साहिर व संगीतकार खयाम। इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। श्रोताओ, अब से कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकाले।

0: अले अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
2: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
3: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में

0: भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वही 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 100

0: 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
2: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तरकश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।

दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। कम्स फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस इंडोनेशियन पार्लियामेंट कॉल्स फॉर डीपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस रिव्यूज एल नीफ हॉर्मुज, ऑल्सो रिवोक्स इज सैंक्शंस रिलीफ ऑन इरानियन ऑयल। एंड इन फुटबॉल, अर्जेंटीना एंड स्विट्जरलैंड एंटर क्वार्टर फाइनल्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं निदा फाजली का कलाम आशा भोसले के स्वर में। दिल का लगाना खेल न जानो, दिल लगाना मुश्किल।

और अब कार्यक्रम के आखिर में लीजिए, सुनिए अशोक खोसला को। कलाम डॉक्टर राही मासूम रजा की है। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते मेरे तन्हाई पर मुस्कुराते रहे।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप पंकज उदास, आशा भोसले और अशोक खोसला की आवाजों में चंद गजलों का लुत्फ उठा रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म कलाकार से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। गीत लिखा इंदिवर ने तथा इस गीत को सुर में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आइए सुने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में लीजिए सुनिए अनजान के लिखे बोल, जिसकी तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है डॉन।

0: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
1: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे वाईफाई, सुनना मेरी बात।
4: हाँ भाई, बोलने का ना।

0: समझ गया भाई, जरूरी है, क्योंकि सेहत बोले तो जिंदगी और सेहत बोले तो खुशहाली।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने, और कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवा रहे हैं लूट मार फिल्म का गीत आशा भोसले के स्वर में, अमित खन्ना का लिखा गीत जिसकी धुन तैयार की राजेश रोशन ने।

कल्याण जी आनंद जी की तर्ज पर बनी ये है गुलशन बावरा के लिखे शब्द, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है जंजीर।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं देश परदेश फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में। अमित खन्ना के लिखे बोल को सुरों में ढाला है राजेश रोशन ने।

किशोर कुमार के स्वर में श्रोताओं, अभी आपने देश परदेश फिल्म का ये गीत सुना। गीतकार थे अमित खन्ना व संगीतकार राजेश रोशन। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं संजीव अभ्यंकर का हिंदुस्तान शैली में गायन। विलंबित रचना 1 ताल और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है, तो लीजिए सुनिए इनका राग भैरव।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

अब प्रस्तुत है फिल्म रॉय का गीत। इस गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत दिया है मीट ब्रोस अनजान नेवा, गायक कलाकार है मीट ब्रोस अनजान और कनिका कपूर।

अगला गीत सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज़ में। इस गीत के गीतकार हैं मिर्ज़ा गालिब, संगीतकार है आयुष्मान खुराना और फिल्म का नाम है हवाई ज़्यादा।

आप सुनते हैं फिल्म हे ब्रो का गीत। इस गीत के रचनाकार है प्रणव वत्सा, संगीतबद्ध किया है निट्स एंड सोनी ने तथा स्वर दिए हैं सोनू निगम व ए शिवामणि ने।

इंदीप बख्शी और सोनी बी की आवाज़ों में सुनिए दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत। इस गीत के संगीत निर्देशक और शब्दकार है इंदीप बख्शी।

अगला गीत सुनिए एक पहेली लीला फिल्म से, जिसके गायक कलाकार हैं मोहित चौहान, संगीति है टोनी कक्कर की और बोल है मनोज मुंतासिर के।

रोचक कोहली के संगीत निर्देशन में इन्हीं के लिखे बोल सुनिए वेलकम टू कराची फिल्म से। इस गीत को आवाजें दी हैं मीका सिंह और शिवी ने।

0: দারুণ আছে।
1: अब प्रस्तुत है फिल्म दिल धड़कने दो का गीत। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और इसके गायक कलाकार हैं सुकृति कक्कर और सिद्धार्थ महादेवन।

आइए सुनते हैं शान और तुलसी कुमार की आवाज़ों में अगला गीत, जिसके गीतकार हैं मयूर पुरी, संगीतकार प्रीतम, फिल्म का नाम है आई लव न्यू ईयर।

श्रोताओं, अब पेश है फिल्म बजरंगी भाईजान का गीत। इस गीत को धुनों से सजाया है प्रीतम ने, शब्द है मयूरपुरी के और स्वरों को संवारा है विशाल ददलानी और नकाश अजीज ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए सोना महापात्रा और अभिषेक नैलवाल की आवाज़ों में। इस गीत की धुन बनाई है राम संपत ने, बोल है पुनीत कृष्णा के और फिल्म का नाम है बेंगिस्तान।

श्रोताओं, चलिए एक और गीत सुनते हैं प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की आवाज़ों में। इस गीत की धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने, बोल है जावेद अख्तर के और फिल्म का नाम है दिल धड़कने दो।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1323वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के

0: बारे में एक और रोचक बात।
1: जी
0: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था।
1: जी अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे। गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
0: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने।
1: जी
0: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही।
1: जी
0: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
1: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
0: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
1: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
0: क्यों?
1: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इस

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम

0: डॉक्टर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
1: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
0: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
0: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
1: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
0: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते?

0: अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा।

0: कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए। आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
1: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
0: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
1: वाकई कमाल है।
0: अभ्यास से गलतियां नहीं होती। हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
1: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
0: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
0: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
1: सच?
2: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1323वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र लोक संगीत।

तो लीजिए पहला गीत तलाश फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत के संगीतकार हैं संजीव दर्शन और बोल है समीर के।

निखिल विनय के संगीत निर्देशन में इस गीत को रचा है समीर ने इंसाफ द जस्टिस फिल्म के लिए। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल ने।

अगला गीत सुनिए उदित नारायण, साधना सरगम व साथियों की आवाज़ों में तुझे मेरी कसम फिल्म से, जिसके संगीतकार है विजू शाह और शब्दकार है महबूब।

अलीशा चिनॉय और आनंदराज आनंद की आवाज़ों में सुनिए देव कोहली की रचना, आनंदराज आनंद की संगीति में ये गीत। फिल्म का नाम है प्लान।

नदीम श्रवण की संगीत निर्देशन में सुनिए समीर के बोल। इस गीत को स्वरबद्ध किया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने फिल्म हंगामा के लिए।

बॉम्बे जयाश्री की आवाज़ में समीर का रचा गीत, जिसके संगीत निर्देशक है हरी जयराज, फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में।

0: इसी के साथ चित्रलोक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹേഴ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजे हैं। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वी के बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

0: मंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he considers it his good fortune to have had repeated opportunities to connect with Lord Shiva at various sacred sites. Addressing at the Prambanan Temple in Yogyakarta, Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hatkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlings, holds special significance with him, having direct responsibility for its development. Mr. Modi also noted that his parliamentary constituency, that is Kashi, Varanasi, is home to Kashi Vishwanath Mahadev, whose blessings, he said, have always guided him. Referring to the redevelopment of the Kedarnath Temple and the Mahakaleshwar Temple in Ujjain, the Prime Minister said he had the privilege of contributing to these projects. He added that his visit to the Prambanan Temple had also given him the opportunity to initiate renovation efforts, describing it as a matter of great fortune.
2: Yogyakarta ke is bhavya mandir complex ab jab hum punarnirman ka kaam karne ja rahe hain aur ye UNESCO ka world heritage hai duniya ke dur dur kshetron mein kahin par bhi jaye hame kahin na kahin bharat ki sanskrutik virasat ke darshan hote hain ye pure southeast asia ka dusra sabse bada hamari virasat ki pehchan hai.
1: The Prime Minister has since departed for Australia. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit, where he will participate in the third India-Australia annual summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. Mr. Modi will also address a large gathering of the Indian diaspora. The Enforcement Directorate is conducting search operations at 5 premises in Delhi, NCR, in connection with the ongoing investigations into 3 cases involving cheating of home buyers through subvention schemes. The investigation conducted by CBI revealed that the builders have cheated the home buyers and investors in the name of subvention schemes. It is further revealed that the builders floated no EMI till possession schemes, whereby the home buyers availed housing loans and booked flats. However, even after the lapse of several years, possession of the flats has not been delivered to them, causing wrongful loss to the home buyers. Union Home Minister Amit Shah today spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis regarding the heavy rainfall and flood-like situation in the state. During the conversation, Mr. Shah assured the Chief Minister of all possible assistance from the central government to support the Maharashtra government in dealing with the situation. Several parts of Maharashtra have been affected by heavy rainfall over the past few days. In Jammu and Kashmir, police today said that one

श्रोताओं, और अब आखिरी गजल सुनिए, इन्हीं की आवाज में गाया, जिसे कैसर ने शब्दों से रचा है।

श्रोताओं, महफिले कवाली के इस कार्यक्रम में आप असलम साबरी को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपके नाम फिल्मी पैगाम में, जहां भावनाओं को शब्द मिलते हैं और शब्दों को सुर। इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपके द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए पसंदीदा फरमाइशी गीत। हमें अपना पैगाम व्हाट्सएप करने के लिए नोट कर ले, हमारा नंबर है 9474234000। आइए अब शुरू करते हैं आज के पहले पैगाम से। आज का पहला पैगाम हमें भेजा है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज़ और बेबी चाहत ने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फूल और कांटे फिल्म का गीत, तो प्रस्तुत है इन श्रोता के पसंद का ये गाना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में।

अगला पैगाम हमें भेजा है ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। ये श्रोता किसी भी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, तो चलिए सुनाते हैं इनको हमारी तरफ से फिल्म हमराज का गीत। इस गीत को आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने, बोल है साहिर के और धुन बनाई है रवि ने।

श्रोताओं, अगला पैगाम हमें भेजा है मच्छी लाइन से शीला कुमारी ने। ये श्रोता दिल तो पागल है फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं, जिसके शब्दकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह और आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर व उदित नारायण ने।

तो चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें मिली है शादीपुर से, जिसे भेजा है एम के सूर्य प्रकाश ने। ये श्रोता तेरे नाम फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, जिसके गायक कलाकार है सुखविंदर सिंह, संगीतकार है साजिद वाजिद और बोल है जलीस शेरवानी की।

श्रोताओं, अगला पैगाम हमें भेजा है पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, वाणी थांदी और बेबी वमिका ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं अखियों के झरोको फिल्म का गीत।

0: श्रोताओं, वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम का अंतिम पैगाम हमें भेजा है पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशाल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगला शाह और राजेंद्र शाह ने। इन्होंने सुनना चाहा है मंजिल फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

इसी गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। जाने से पहले हम आपको बता दें, आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर है 9474234000।

शून्य शून्य। अब चाहेंगे आपसे इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अभी आप सुनेंगे समाचारों का प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in third India-Australia annual summit. Two-day BRICS women ministerial meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामानंद भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेल

मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे यह भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने

0: स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वाइडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वाइडनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने

0: में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।
2: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: हेलो
1: हेलो डियर फ्रेंड्स।
0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारी बात केसरी सिंह राजपूत जी से हो रही है।
1: जी हाँ जी हाँ दीदी, मैं केसरी सिंह राजपूत बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी केसरी जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया दीदी, और आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बताइए आप क्या करते हैं?
1: दीदी मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, और साथ में खेती भी है।
0: जी, तो पेंटिंग, क्या की पेंटिंग करते हैं आप?
1: ये बाल पेंटिंग, दीवार लेखन जिसे बोलते हैं, चित्रकारी वगैरह
0: ओके ओके, बहुत ही अच्छा काम है ये। और खेती क्या के करते हैं आप?
1: हुई। खेती दीदी भैया देखते हैं,
0: जी
1: और कभी कभी जाना हो जाता है गांव पर, तो अच्छा लगता है। साग सब्जियां लगी हुई हैं, साग सब्जियां ले आते हैं।
0: जी जी जी जी और अपने शहर के बारे में बताइए।
1: शहर है दीदी अपना बैरसिया, तहसील है। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, और बढ़िया प्रभु की कृपा से घर बना हुआ है अपना। तो बच्चे पढ़ रहे हैं और बस कट रही है दीदी जिंदगानी।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर आपका गाना सुनते हैं। तो आप गाना बता दीजिए।
1: निकाह मूवी से है।

0: बीतते हुए लम्हों की कथक याद तो होगी या सांस तो होगी, ऐसा करके है। और हमारे मित्र हैं
1: जी।
0: आप सुनेंगे
1: जी जी।
0: पूर्णिमा जी हैं विजयपुरम से, और धर्मवीर जी हैं दिल्ली से, और राम बाबू शर्मा जी हैं गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, सुनील झा जी, और गौतम रायगोले जी, और जितने भी लाइव हैं सभी के लिए रहेगा, आपके लिए भी।
1: जी जी, चलिए फिर सभी के साथ ये गीत सुनते हैं निखा फिल्म से।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया, इसके लिए आपको तहे दिल से आभार।
1: जी धन्यवाद।
2: अभी अलविदा मत कहो।

0: जितने भी लायक हैं सभी के लिए रहेगा, आपके लिए भी।
1: जी, चलिए फिर सभी के साथ ये गीत सुनते हैं निखा फिल्म से।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया इसके लिए, आपको तहे दिल से आभार।
1: जी धन्यवाद।
2: अभी अलविदा मत कहो।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हमारी बात तैयबा जी से हो रही है
1: जी।
0: जी? तैयबा जी कहाँ से बोल रही हैं आप? पोर्ट ब्लेयर से बोल रही हैं
1: हाँ जी, पोर्ट ब्लेयर से बोल रही हूँ
0: जी? तो बताइए कैसी हैं आप
1: जी। मैं ठीक हूँ
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी। मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ।
0: अच्छा, तो आप बिजनेस करती हैं
1: नान की बिजनेस करती हूँ
0: जी? तो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है
1: जी। अच्छा चल रहा है जी।
0: जी? तो आप पोर्टब्लेयर में कहाँ जाना पसंद करती हैं, मतलब कौन सा जगह आपको ज़्यादा अच्छा लगता है जाना?
1: पोर्टलैंड में चिड़िया टापू
0: चिड़िया टापू? अच्छा, वहाँ पे सनसेट वगैरह सब देखने के लिए पर्यटक जाते हैं
1: जी।
0: जी? तो तैयबा जी, आप बता दीजिए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं ताकि हम वो गाना निकाल कर रख दें।
1: जी बता देती हूँ अभी। एनिमल मूवी का गाना है, पहले भी है।
0: सॉरी तैयबा जी, माफ़ कीजिएगा, एनिमल मूवी हमारे पास नहीं है, एनिमल मूवी का गाना तो नहीं होगा, आप कुछ और गाना बता दीजिए
1: ठीक है, बागी मूवी का गाना दे दीजिए आप।
0: जी। जी जी जी
1: सब तेरा
0: जी, ठीक है, बागी मूवी का गाना हम चला देंगे। और बताइए आप,
1: जी
0: हमारे रेडियो का प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सुनती हूँ।
0: अच्छा, कौन सा प्रोग्राम सुनती हैं आप?
1: वो तो याद नहीं है अभी।
0: जी, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए फिर आपका गाना सुनते हैं। आपने जो फरमाइश भेजी है तो चलिए आपकी फरमाइश को देते हैं एक संगीत का साथ और सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार
0: नमस्कार, राकेश जी बोल रहे हैं
1: जी। मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: जी। राकेश जी, तो बताइए कैसे हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया है। और हमारी इधर बरसात का मॉनसून सीजन शुरू हो चुका है। जी
0: अच्छा, मॉनसून सीजन शुरू हो चुका है, तो
1: जी
0: कैसे लुत्फ़ उठाते हैं आप बरसात के मौसम का?
1: जी जी बरसात के मौसम का अच्छा लुत्फ उठाते हैं। और जब जब झमाझम बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे मौसम में जब गाने भी सुनने को अच्छे मिलते हैं तो आप प्रोग्राम भी सुनते हैं और मौसम का भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन थोड़ी सावधानी भी हम रखते हैं जो कि हमें रखनी चाहिए।
0: जी, सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। और बारिश के टाइम में तो चाय के साथ में कुछ गाने और कुछ खाने को हो जाए तो बहुत ही अच्छा है।
1: जी, वो भी अच्छे हैं लेकिन हमें सावधानी रखनी है। जैसे कि हमारा एक पहाड़ी क्षेत्र है तो लैंडस्लाइड ज्यादा होती है तो कई बार वो रखनी पड़ती है। कई बार हमारे को जैसे कि हमारे एप्पल के जो बगीचे होते हैं कई बार हम से पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि कई बार भूस्खलन आते, क्योंकि कई बार एप्पल को पहुंचाना है उसकी जो जो खेप होती है पेटिया होती है तो
0: जी
1: बड़ी
0: जी
1: मुश्किल से
0: जी
1: पहुंचानी पड़ती है।
0: जी तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है आपको।
1: जी, बिल्कुल, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है तब जाके हमारा ये होता है। तो बाकी श्रोताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप, अच्छी बात है, आप शिमला घूमने आते हैं, हमें अच्छा लगता है जब दूर दूर से श्रोता शिमला घूमने आते हैं। लेकिन थोड़ा आप जब बरसात का मानसून सीजन होता तब आपको घूमना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हिमाचल में ऐसी स्थिति आती है। हाँ, जो आगे हैं तो सावधानी, जहाँ सावधान होता है, जहाँ आपको सुरक्षा मिलती है तो आप वहाँ रहना चाहिए।
0: जी
1: ऐसे लैंडस्लाइड ज्यादा होती है।
0: जी तो आप बता सकते हैं कौन से महीने में ज्यादा बारिश हुआ करती है वहां पे, ताकि हमारे श्रोता
1: हमारे
0: जो जाना
1: हमारे
0: चाहे।
1: जैसे कि जैसे सावन का महीना जुलाई अगस्त सितंबर तक होती है और सितंबर के बाद आप घूमने आ सकते हैं। मई जून में घूमने आ सकते हैं। अगर आपको बर्फ देखनी तो जनवरी में आप घूमने आ सकते हैं।
0: जी शिमला तो बहुत ही सुंदर जगह है जी।
1: जी जी शिमला। जी
0: तो
1: जी
0: राकेश जी, हम पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, कौन सा फिल्म का गीत?
1: तो गीत भी सुनेंगे और कुछ दोस्तों को भी डेडिकेट करना चाहते हैं। और मूवी का नाम है सैनिक और
0: जी
1: गाने की बोल है मेरी वफा है तुम याद करोगे। और हमारे मित्र हैं, सबसे पहले तो आप

0: गाना डेडिकेट रहेगा
1: जी। धन्यवाद जी। और
0: तो पूर्णिमा जी हैं, सचिन विष्णु कुंड जी हैं, मोनिका जी हैं, और महाराष्ट्र से तनुश्री हैं, और कांता वर्मा जी हैं, और धर्मवीर जी हैं, पूरण वर्मा और भगवान सिंह परमार, और धर्मवीर जी और मांगीलाल सिंडेल, तमाम सुनने वाले श्रोता जिनका भी नाम छूट गया, उन सभी के लिए गाना डेडिकेट है।
1: जी जी राकेश जी, ठीक है, चलिए फिर हम आप सभी के साथ में ये गीत सुनते हैं।
0: जी जी, धन्यवाद
1: धन्यवाद जी।

हेलो डियर फ्रेंड, हेलो हेलो हेलो। शायद हमारी श्रोता से हमारा लिंक कट गया है, तो कोई बात नहीं, हम गाना चला देते हैं। दूसरा गाना हम प्ले करेंगे अभी।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो।
1: मेरे प्यारे प्यारे मुझे प्यार भरा गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून मैम, बोलिए।
1: मिंद्रांग जिला से करा महाराष्ट्र से मिश्री से मैं बात कर रही हूँ।
0: जी जी तनुश्री जी, बोलिए कैसी हैं आप।
1: जी मैम, मैं बहुत बढ़िया और आपसे बात हुई तो और भी बढ़िया हो गई।
0: जी, और बताइए आपके शहर में महाराष्ट्र में कैसे मौसम कैसा है।
1: जी मैम, 2-3 दिन से लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही है।
0: जी, सारे जगह ही बारिश, अभी बारिश का मौसम है।
1: जी
0: जी, और बताइए क्या करती हैं आप।
1: जी मैम, मुझे 10वीं से दिखाई नहीं देता, तब से मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: ओ, शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं आप, बहुत ही बढ़िया जी। और बताइए अपने शहर के बारे में कुछ बताइए।
1: मैम, शहर के बारे में तो इतना तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब पता चलेगा तब तो मेरे आंखों की रोशनी चली गई थी।
0: जी,
1: और मैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को यही कहना चाहती हूँ कि हम का मतलब किसी को भी कम मत समझिएगा, क्योंकि हमें आंख नहीं होती फिर भी हम खुश रह सकते हैं। क्यों, कई श्रोता ऐसे होते हैं कि मतलब हमको कम समझते हैं, ऐसा मतलब इनमें कोई का कमी है तो इनको मतलब वो कमियां इनको मत निकालिए, उनको हौसला दीजिए, ऐसा मुझे लगता है मैम।
0: जी, आप सही कह रही हैं कि आँख आँख होना ज़रूरी नहीं है। आँख से सिर्फ हम बाहरी नज़ारा देख सकते हैं, बट जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं, वो दिल दिमाग, ये ज़रूरी है हमारे लिए। आँख तो बस देखने का माध्यम है।
1: जिनके आंखें नहीं होती ना मैम, वो बहुत अच्छे से दुनिया दिखती है मन से, जो बहुत अच्छे से हम जैसे श्रोता होते हैं ना, तो मन से बहुत अच्छे से दुनिया दिखती है।
0: जी, दुनिया मन से देखो तो ज़्यादा अच्छा है, आँख से बेहतर दिखेगी।
1: जी
0: जी, और बताइए आपका कौन सा गाना सुनना चाहती हैं।
1: जी मैम, फिल्म का नाम है थानेदार और गाने के बोल है जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रो ना ना। उन्हीं श्रोताओं के लिए गाना मैम डेडिकेटेड जो खुद को कम समझते हैं।
0: जी, आपकी आवाज़ भी बहुत ही मधुर है।
1: और मैम, मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ दोस्तों को,
0: जी, ज़रूर।
1: पहले तो आप है और मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा। भगवान सिंह परमार जी है, राकेश जी है शिमला से, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह सिचोरी।

0: जी है और अविनाश जी है, अमोल भट्टाचार्य जी, इन सब की मैं साथ सुनूंगी।
1: जी तो चलिए फिर सभी के साथ सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।
0: ओके, बाय बाय,
1: बाय, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: जी नीतू जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: जी
0: सभी बहुत अच्छे हैं। और बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: जॉब करती हैं? क्या जॉब करती हैं आप?
1: मैरिज
0: अच्छा, मैरिन डिपार्टमेंट में जॉब करती हैं। तो बताइए, अभी तो अंडमान में बारिश है, कभी धूप है, तो कैसा आप कैसे मजा ले रही है इस मौसम का?
1: अच्छी
0: जी, और बताइए अंडमान में आप कौन सी जगह पर घूमना पसंद करती हैं?
1: मजा ले रही हूँ।
0: जी, तो आगे बढ़ने से पहले बता दीजिए आप कौन सी गाना सुनना चाहेंगी?
1: प्यार
0: हाँ जी, ओके, ठीक है, हम वो गाना प्ले करेंगे। आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे श्रोताओं से?
1: नहीं, नहीं।
0: जी ठीक है, तो चलिए, आप रेडियो का प्रोग्राम सुनती हैं? रेडियो में आप प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सुनती
0: कौन-कौन से प्रोग्राम आप सुनती हैं?
1: सारी प्रोग्राम
0: सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन सा प्रोग्राम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है?
1: मुझमें डॉक्टर सलाह बहुत अच्छी है।
0: जी, क्या कहा आपने?
1: डॉक्टरी सलाह वगैरह
0: अच्छा, जी चलिए, फिर आप ये गीत अभी किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: मेरे
0: आपके हस्बैंड को? जी चलिए, फिर अब संगीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आप ये शानदार गीत।
1: थैंक यू मैम।
0: जी धन्यवाद।

0: श्रोताओं, वक्त है एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं इस अंतराल के बाद, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी। Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। तो चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड।
2: हेलो मैडम, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, गगनदीप जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी, मैं गगनदीप फांदी बोल रहा हूँ।
1: जी गगनदीप जी, पंजाब से बोल रहे हैं आप?
2: हाँ जी, नवांशहर पंजाब से।
1: जी जी जी, तो बताइए कैसे हैं आप?
2: मैडम बहुत बढ़िया हूँ
1: जी। तो इस समय आपका शहर का मौसम कैसा है?
2: मैडम शहर का मौसम तो थोड़ा गर्मी ही है।
1: अच्छा, वहाँ पे गर्मी है?
2: हाँ थोड़ा, वैसे तो मानसून जो है पंजाब में पहुँच चुकी है।
1: जी जी,
2: और पता नहीं क्यों कि ये हमारा जो शहर है ना, इसके आसपास वो 10 किलोमीटर के करीब राउंड बारिश हो रही है, लेकिन जहाँ पे एक भी बारिश नहीं हुई है।
1: जी, और बताइए, पहले हम आगे बढ़ने से पहले आप बता दीजिए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: मैडम फिल्म का नाम है कल की आवाज।
1: जी,
2: कुमार सानू और आशा भोसले जी का गाया हुआ गीत है।
1: जी,
2: तुम्हारी नजरों में हमने देखी आज उसी चाहत झलक रही है।
1: जी, तो बताइए पंजाब में कैसा है, मतलब शहर, अगर हम अंडमान से कोई आता है घूमने के लिए तो वहाँ पे कहाँ जाना ज़्यादा अच्छा होगा? मतलब पर्यटक अगर घूमने आए तो पंजाब में कौन सी जगह घूमना होगा?
2: मतलब पंजाब में सबसे ज़्यादा तो जो हमारी इधर है ना, कि जैसे गोल्डन टेंपल है, जो भी पंजाब के लिए आता है इधर,
1: जी
2: तो
1: जी,
2: वो कभी भी गोल्डन टेंपल देखने के बिना नहीं जाता है, वो कभी नहीं भूलता है कि मैं गोल्डन टेंपल जाऊँ।
1: जी जी,
2: तो गोल्डन टेंपल है इधर, जो हमारे सिख धर्म का धुरा जिसे कह सकते हैं हम, जहाँ से सिख पंथ की साधना हुई थी, वो तो श्री आनंदपुर साहब है।
1: जी जी,
2: वो भी घूमने के लिए और बहुत अच्छा है
1: जी।
2: तो वहाँ पे वो धार्मिक भी है, उसके साथ ही ऊपर श्री नैना देवी जी का आ जाते हैं, और इधर से मनाली टाइप भी, जो सब जो मनाली

श्रोताओं, सुरों और गीतों से सजी हमारी यह हेलो डियर फ्रेंड कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।

FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 3:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ों से नहीं, सिर्फ एहसासों से समझे जाते हैं। ये रिश्ते ना वक्त देखते हैं ना दूरियां, बस दिल से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही एक खूबसूरत एहसास को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए और सुनिए एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी ये हमें मुस्कुराहट देता है तो कभी आंखों में नमी छोड़ जाता है। पर सच तो ये है, जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो कभी पूरी तरह दूर नहीं होते। आज के इस पल में उन अधूरे और गहरे एहसासों के नाम सुनिए एक दिल को छू लेने वाला गीत।

दोस्तों कहते हैं कि सपने अकेले देखे जाते हैं, पूरे उन्हें पूरा करने की हिम्मत अपनों के प्यार से मिलता है। क्योंकि जब अपनों का साथ हो तो हर ख्वाब अपना सा लगता है। चलिए आज बुनते हैं कुछ ऐसे ही सपने अपनों के साथ।

दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ यादें हमारी हकीकत से ज़्यादा हमारे सपनों में जिंदा रहती है? वो लोग जो अब पास नहीं, वो बातें जो अब नहीं होती, पर वो रिश्ता वो आज भी उतना ही गहरा और पुराना है। उसी खामोश और पुराने साथ के नाम सुनिए ये धुन।

दुनिया हर चीज को एक नाम देना चाहती है, पर कुछ रिश्ते उस नाम की सरहदों से बहुत ऊंचे होते हैं। जैसे सुबह का वो सपना जो आंखों से ओझल तो हो पर दिल में अपनी महक छोड़ गया। बस वही कश्मकश, वही मीठा सा दर्द कि आखिरी ये रिश्ता क्या कहलाता है। महसूस कीजिए इस रूहानी धुन को जो सीधे दिल के पार जाती है।

0: अभी आप यूं ही गाते रहो कार्यक्रम सुन रहे थे।
1: 30.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
2: सिनलाम इंजी रखरे हमांग इंजे तका इनगम मिटिमवे 48.6 मीटर हेक इंगम 684 किलोहर्ट्स लिखती है आंग इन रमांगलनी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकुबारी प्रोग्राम तांग।

Hello, my dear friends. Welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. There is no place like home. Ghar hi swarg hai. Ek shantipurna ghar kaise banaye? This all depends on the people living in the house. Aisa ghar banane ka kya matlab hai, jisme hamare bacche ghar aakar khush ho. Hum sabhi इस पागल दुनिया में सुरक्षा की जगह पाने की कोशिश करते हैं और ये एक स्टाइलिश लिविंग रूम बनाने से कहीं ज़्यादा है। हम अपने घर में ठोस शांति चाहते हैं। हम उसे बुद्धिमान महिला की तरह बनाना चाहते हैं जो अपना घर बनाती है। एक सुकून देने वाला आश्रय, एक आरामदायक आश्रय।

हम किस से आनंददायक हंसी से भरा घर बनाते हैं। आज की संस्कृति में तेज चलना अच्छा है और धीमा चलना बुरा। हर दिन भागदौड़ करना आम बात है, इसके चलते तनाव तो रोज होती ही होती है। प्यार, अपनापन और सुकून का एहसास, ड्रीम हाउस की ये है पहचान। हर गलती माफ हो और हर खुशी साझा की जाए। घर को सपनों का आशियाना बनाने के लिए जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य कुछ खास आदतें और नियमों को अपनाएं। ये नियम न केवल रिश्तों को मजबूत करेंगे बल्कि घर के माहौल को भी खुशनुमा और सकारात्मक बनाएंगे। ऐसी फैमिली में बच्चों का मानसिक शारीरिक ग्रोथ भी काफी अच्छा होता है। घर में ऐसा माहौल हो कि हर सदस्य अपनी बात खुलकर बताए और सभी उसकी हर बात को ध्यान से सुने, बिना टोके अपनी बात रखने पर उसे जज ना करें। ये आदत पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाती है। हर इंसान से गलतियां होती है, किसी की गलती पर उसे जज करने के बजाय प्यार और समझदारी से सही रास्ता दिखाए। जज करने से रिश्ते में दूरियां आने लगती है। परिवार का हर सदस्य अगर कुछ अच्छा करता है या कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है तो उसके प्रयासों को भी सराहें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और घर का माहौल सकारात्मक रहता है। दिन में कुछ वक्त ऐसा तय करें जब सभी सदस्य एक साथ रहें, जैसे रात का खाना या शाम की चाय। यह परिवार को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इस समय उन बातों को इग्नोर करें जिस पर बहस या मतभेद हो सके। हर सदस्य की अलग अलग जरूरतें होती हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें और उनका सम्मान करें। ये समझो कि हो सकता है कि आपके लिए वो चीजें मायने न रखती है, लेकिन किसी दूसरे की खुशी के लिए उसका होना जरूरी हो सकता है। बिना वजह हर बात पर रोक टोक करने से घर का माहौल बोझिल हो सकता है। बच्चों और बड़ों को उनकी उम्र और समझ के अनुसार आजादी दें। अगर आप हर वक्त बच्चों या अन्य लोगों को टोकते रहेंगे तो उनके मन में आपके प्रति इरिटेशन भाव पैदा होगा। घर में किसी भी तरह के विवाद को बिना चीख चिल्लाए सुलझाना जरूरी है। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं और गुस्सा आ रहा है तो बेहतर होगा कि ब्रेक ले और पहले खुद को शांत कर ले। हर बार बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालें। अपनी खुशी, दुख, गुस्सा और डर जैसी भावनाओं को परिवार के साथ साझा करें। इससे रिश्ते में और गहराई आती है, वे आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हर दिन के लिए अपने परिवार के साथ बिताए समय के लिए और उनके योगदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। फिर वह आपकी पत्नी हो, माँ हो, पिता हो या बच्चे हो, अगर आप इन रूल्स को फॉलो तो आपका घर सच में सपनों का आशियाना बन सकता है। याद रखें, प्यार और समझदारी ही एक परिवार की असली नींव है। घर एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति को सुकून और आराम चाहिए होता है। ऐसे में हाउ टू हैव अ हैप्पी एनवायरनमेंट एट होम, घर में खुशहाल वातावरण कैसे बनाए, इस पर विचार करना है, क्योंकि ये हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि जब शाम को घर में थका हारा आए तो उसे एक अच्छा माहौल मिले, एक खुशनुमा माहौल मिले, मन की शांति मिले जिसमें रहकर वह अपने सारे दुख और दर्द को भूल जाए। घर के माहौल को अच्छा करना वैसा तो सबकी जिम्मेदारी होती है, फिर भी इसमें महिलाएं ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती है, क्योंकि मकान को घर तो एक महिला ही बनाती है। और सोच के देखिए, जब कभी दो दिन के लिए आप घर से बाहर चली जाती है तो आपके घर का क्या हाल होता है। घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए व्यक्ति का स्वभाव, रहन सहन, बोलचाल सब मायने रखती है और आप अपने

घर को कितने अच्छे से रख पा रही है ये बिल्कुल आप पर ही निर्भर करता है। एक बात तो ये सच है कि कभी कभी गुस्सा आप किसी और के कारण होते हैं और आपका गुस्सा कहीं और निकल जाता है, जैसे आप ऑफिस के बॉस से कुछ गुस्से में आकर बात करते हैं, या आप ऑफिस से बॉस की डांट को पहले से सुनकर आए हैं, और जब आप शाम को थके हारे परेशान घर आए तो अपने बेडरूम को पूरी तरह से अस्त व्यस्त देखा, तो ऐसे में ऑफिस का गुस्सा आप अपने वाइफ या घर के अन्य लोगों

थके हारे परेशान घर आए तो अपने बेडरूम को पूरी तरह से अस्त व्यस्त देखा, तो ऐसे में ऑफिस का गुस्सा आप अपने वाइफ या घर के अन्य लोगों पर निकालेंगे, और यदि इसका उल्टा है, आप ऑफिस से तो परेशान हो पर जब आप घर में अपने बेडरूम में जाते हैं तो आपका सब कुछ परफेक्ट दिखता है, तो शायद आप अपने ऑफिस की गुस्से को मैनेज कर लेते हैं। हर बात कहीं ना कहीं किसी बात का कारण होता है। बिना रीजन के माहौल कभी खराब नहीं होता है, बस आपको पहले से स्मार्टली चीजों को समझना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, जिससे आपके घर का माहौल हमेशा शांत रहे। ध्यान रखें कि आपके किचन में बर्तन का ढेर न लगे हो, थोड़े थोड़े बर्तन को साफ करते रहिए, और यदि आपके मेट करती है तो बर्तन को एक अलग जगह पर लगाए। किचन हमेशा साफ सुथरा रखें, जिससे यदि आप घर में नहीं भी हो तो आपके अन्य घर वाले कुछ ना कुछ बनाकर खाकर उसे मेंटेन कर सके। तो दोस्तों, ये तो छोटे छोटे नुस्खे हैं जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ये टिप्स आप फॉलो करके आपके घर को आप एक स्वर्ग बना सकती है। ये सब आपके हाथों में है। Everything is in your hands. With this wonderful information about how to create a very happy and a peaceful home environment, this is Chetan saying bye in today's Lamhe program. अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Call or messages on 09515227039, that's 09515227039, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla, that's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों के शाम। शाम 5 बजे आप सुनेंगे तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा वन महोत्सव, और डॉक्टर वीबी पांडे से की गई बातचीत आपको सुनवाई जाएगी, जिसका शीर्षक होगा द्वीपों में सजन फली की खेती। शाम 6:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएँ दी जाएगी 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय होगा 7:20 पर। 7:30 पर युववाणी के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। फिल्मी गीतों का लुफ्त लीजिए रात 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार व गौरवगान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात

9 बजे न्यूज़ एट 9, रात 9 बजकर 15 मिनट पर स्पॉटलाइट, रात 9 बजकर 30 मिनट पर चर्चा का विषय और रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम आप सुनेंगे, जबकि FM 100.9 MHz पर रात 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाली आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5 बजकर 25 मिनट पर। 5 बजकर 30 मिनट पर सुनिए अनमोल विचार, तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5 बजकर 55 मिनट पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा लौकी की खेती। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे 6 बजकर 10 मिनट पर।

6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम का शीर्षक होगा तारीफ। रामचरित मानस गान की 294 कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत देशभक्ति गीत सुनिए 6:40 पर। 6:50 पर मौसम की जानकारी एवं कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा। सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जनसूचनाएं। 7:15 पर देशरागिनी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमती गीता सागर से ली गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा धरती की हरितिमा कायम रहे, और साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। आठ बजकर 30 मिनट पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे सवेरे 9 बजे तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में TN शेष गोपालन का कर्नाटक शैली में गायन आप सुन पाएंगे। SMS माय चॉइस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1324वीं कड़ी। दिन के 11:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। तेलुगु कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत में फनकार होंगे रेनू और विजय सिंह। व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:30। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाली आज के शेष व कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों के शाम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए प्यार दीवाना होता है फिल्म का गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में बोल मदन पाल की तथा धुन बनाई है बाबुल बोस ने।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए हम है राही प्यार के फिल्म का गीत। गीत रचना समीर की तथा स्वर दिया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कोई मेरे दिल में है का गीत, अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत रचना फयाज़ अनवर की और संगीत दिया है निखिल विनय ने।

0: अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों के शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழமுதம். வணக்கம் நேயர்களே.

अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम।

0: धरती की गोद से निकली खुशबू और मेहनत के पसीने की कहानी लेकर हम फिर हाजिर है कृषि जगत के इस खास कार्यक्रम में। मैं रागिनी आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं, जहां बात होगी खेती की, किसानी की और किसान की तरक्की की। किसान साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत एक नेक विचार से किया जाता है और नेक विचार है, अच्छा मित्र वो होता है जो धूप में छाया और मुसीबत में सहारा बने। अच्छा मित्र वो नहीं होता जो सिर्फ खुशी में ताली बजाए, बल्कि अच्छा मित्र वो होता है जो मुश्किल में कंधा दे, धूप में छाया बने और अंधेरे में रास्ता दिखाए। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ में बैठकर बातें करना नहीं है, दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना और एक दूसरे की सफलता पर दिल से खुश होना। जी हाँ किसान साथियों, जिसके पास ऐसे सच्चे दोस्त हो, समझो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। चलिए साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, मागुर एक वायुश्वासी मछली है या नहीं? किसान भाइयों, इस प्रश्न को फिर एक बार दोहराते हैं, मागुर एक वायुश्वासी मछली है या नहीं? किसान साथियों, आप सभी इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए और हाँ, कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए, क्योंकि सही जवाब हम कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे।

0: एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। पेड़ लगाकर करें पर्यावरण की सुरक्षा, तभी होगी अपने जीवन की रक्षा। तो किसान साथियों, आइए सुनते हैं वन महोत्सव पर एक चर्चा। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम प्रकृति के सौंदर्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखें। वन महोत्सव पर पौधे लगाकर कई उद्देश्यों को साधा जाता है, जैसे वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था, खाद्यान्न संसाधन बढ़ाना, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए खेतों के चारों ओर शेल्टर बेल्ट बनाना, पशुओं के लिए चारा उत्पादन, छाया व सौंदर्यकरण, भूमि संरक्षण आदि। यह लोगों में पेड़ों के प्रति जागरूकता की शिक्षा का उत्सव है। वन महोत्सव लोगों में पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसान के प्रति सजगता फैलाने में सहायक है। चलो मिलकर एक नया कदम बढ़ाएं, इस वन महोत्सव पर हर इंसान एक पेड़ लगाए। साथियों, अभी आप वन महोत्सव पर चर्चा सुन रहे थे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: किसान साथियों, अभी आपने एक बेहद खूबसूरत सा गीत सुना, सहजन, जिसे इंग्लिश में मोरिंगा और संस्कृत में शीघ्र कहा जाता है। आयुर्वेद में सहजन एक बहुगुणी औषधि मानी गई है। इसकी पत्तियां, फली, छाल, जड़, बीज सभी औषधीय गुणों से भरपूर है, क्योंकि इसमें पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनेक रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति है। तो आइए साथियों, सुनते हैं द्वीपों में सहजन फली की खेती के संदर्भ में डॉक्टर विश्वभूषण पांडे से की गई ये बातचीत।
1: किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे हमारे इन द्वीपों में सहजन फली की काश्त के संदर्भ में। आज जैसा कि आप जानते हैं, सहजन फली बाजार में आजकल तो बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है, मांग भी बहुत ज्यादा रहती है। हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर विश्वभूषण पांडे। आरोग्य साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आरोग्य साहब, जैसे हम बात कर रहे थे सहजन फली के बारे में
2: जी,
1: तो आपसे पहले जानना चाहेंगे कि हमारे इन द्वीपों में इसकी खेती की क्या स्थिति है
2: जी,
1: और जहां तक सहजन फली का सवाल है तो हमारे भोजन में इसका क्या महत्व है
2: जी। जैसा कि किसान भाई आप सभी लोग जानते हैं कि इन द्वीपों में किसी भी किसान भाई के घर के आजू बाजू कोई भी खाली जमीन है तो वहां पर एक दो सहजन के पेड़ तो अवश्य देखने को मिलते हैं, चाहे वो पेड़ किसी भी हालत में क्यों न हो, क्योंकि इस पेड़ के विभिन्न भाग अनेकानेक पोषक तत्वों से भरपूर पाए गए हैं। सहजन की कच्ची पत्तियों में तथा सहजन के हरी फलियों में पर्याप्त मात्रा में आपका जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी, खनिज लवण तथा विभिन्न प्रकार के विटामिन, जैसे विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B9 और विटामिन सी, तथा इसके साथ ही साथ बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, लौह तत्व है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम तथा जस्ता इत्यादि भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
1: यानी ये मतलब कह सकते हैं कि पोषक तत्वों का
2: जी
1: भंडार
2: है जी। अच्छा, परंतु किसान भाइयों को इन सभी चीजों के बारे में जानकारी का थोड़ा अभाव होने से वे सहजन फली की खेती के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि इन द्वीपों में भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग रहते हैं, वैसे सहजन की हरी फली का सेवन सभी लोग करते हैं। सांभर में डालते हैं, सब्जी बनाते हैं, नॉन वेज में भी डालते हैं, हरी पत्ती का भाजी बनाते हैं। परंतु दक्षिण भारत के लोग तो सहजन की हरी फली व सहजन की कोमल हरी पत्ती का सेवन तो बहुत तरह से करते हैं, जबकि इन द्वीपों की मिट्टी व जलवायु सहजन की फली की खेती करने के लिए काफी उपयुक्त है।
1: तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती हो सकती
2: जी? ऐसा है, सहजन फली की खेती तो इन द्वीपों में सभी प्रकार के मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी जो है इसके लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें कि जल निकास का समुचित प्रबंध हो। जैसे कि आप जानते हैं कि इन द्वीपों में काफी बरसात होती है, तो वाटर लॉगिंग न हो, पानी न रुकता हो,
1: ऐसा जगह ना हो जहाँ पर पानी की संभावना
2: जी जी। चूंकि इन द्वीपों में सहजन फली की पैदावार बहुत कम है और मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे पूरे वर्ष मुख्य भूमि से मंगाना पड़ता है, इसलिए सहजन फली की कीमत बाजार में काफी ऊंची रहती है। इसलिए अगर द्वीपों के किसान भाई सहजन फली की खेती अगर वैज्ञानिक तरीके से ठीक ढंग से करें तो ये अपनी फसल से काफी अच्छा पैदावार ले।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एक दो पेड़ तो हर एक घर के आस पास जा सकते हैं, आपने कहा विभिन्न परिस्थितियों अच्छा भी है और बहुत कम उत्पादकता वाला, लेकिन अगर किसान भाई थोड़ा व्यावसायिक तौर पर अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहे, कौन सी किस्में हैं जो कि आप हमारे किसानों को बताना चाहेंगे?
2: ऐसा है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जहाँ तक सहजन फली की अच्छी किस्मों का सवाल है, किसान भाई इन द्वीपों में ज्यादातर सहजन फली की लोकल किस्मों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ लोकल किस्में भी बहुत अच्छी उपज देती हैं। परंतु अगर किसान भाई एक रोहित वन किस्म है जो कि रोपण के 4-6 महीने के बाद ही फलत में आ जाती है, तथा वर्ष में 2 बार फल लगता है इसमें, और जो है यह 10 वर्षों तक फलती रहती है। तो दूसरी किस्म है PKM1, जो कि रोपण के 8-9 महीने के बाद फलत में आती है, यह 4-5 वर्षों तक फल देती है। तीसरी किस्म है PKM2, इसके फली की लंबाई करीब 45 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, तथा प्रत्येक पेड़ वर्ष भर में

0: 300 से 400 फली की पैदावार होती है उनसे। इन अगर किस्मों का प्रयोग किसान भाई करें तो अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि सहजन फली के पौधों का जो प्रसारण है वो कैसे?
0: जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। जैसा कि सहजन फली के पौधों का प्रसारण जो है दो तरीके से होता है, पहला बीज से होता है तथा दूसरा वानस्पतिक प्रसारण होता है। बीज से प्रसारण के लिए करीब 18 सेंटीमीटर ऊंची वाली और 12 सेंटीमीटर जो चौड़ी पॉलिथिन बैग होती है उसे करीब 10-15 छेद कर देते हैं ताकि उसमें पानी निकल जाए। उसके बाद उसमें मिट्टी का मिश्रण, जैसे आपको 3 भाग भुरभुरी मिट्टी हुई, 2 भाग वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद हुई और 1 भाग बालू मिलाकर बनाते हैं और इस मिश्रण को पॉलिथिन बैग में भर देते हैं तथा इसमें बीज बोने से पहले इसे पानी में डुबो देते हैं ताकि पूरी मिट्टी में नमी हो जाए, अच्छी नमी हो जाए ताकि बैग में मिट्टी का मिश्रण
1: अच्छा से नम हो
0: जी
1: जाए।
0: अच्छा, बीज बोने से पहले उसे रात भर पानी में भिगो लेते हैं,
1: ये जरूरी है
0: जी, क्योंकि बीज उसका कड़ा होता है। तथा बैग में बोने से पहले बीज का जो सेल होता है उसको तोड़ देते हैं लगाने से पहले, तो अंकुरण जल्दी होता है। तो उसको क्या करते हैं कि एक बैग में कम से कम 2-3 बीज लगाते हैं, करीब 5 से 12 दिन में अंकुरण हो जाता है। तथा पौध उगने के बाद बैग में जब थोड़ा सा बड़ा पौध होती है तो बैग में एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर बाकी पौधे को बैग से निकाल देते हैं। इस प्रकार जब पौधे की ऊंचाई करीब 60 से 90 सेंटीमीटर की हो जाती है तब उसे पॉलिथिन बैग का नीचे का पोर्शन को हिस्सा को पॉलिथिन बैग का फाड़ के निकाल देते हैं या ब्लेड से काट कर, और मुख्य भूमि में जो गड्ढे बनाते हैं उसको प्रतिरोपण करने के लिए उसको जो है उसमें प्रतिरोपित कर देते हैं।
1: मतलब ये पौधे 60 से 90
0: सेंटीमीटर हाइट के हो जाए जी, कर देते हैं। तथा दूसरा मैंने तरीका बताया कटिंग से प्रसारण करने के लिए, तो इसमें क्या करते हैं कि पुराने चुने हुए पेड़ से जो मतलब अच्छा पैदावार देता हो पेड़ उसको जो है उससे जो है हार्ड वुड कटिंग, सॉफ्ट नहीं, हरे रंग की कटिंग नहीं, जो हार्ड वुड कटिंग होती है, कड़ी कटिंग होती है, उसकी कटिंग को जो है करीब 45 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर लंबाई में और 10 सेंटीमीटर की मोटाई में जो होती है उसी को काटते हैं। और अगर कटिंग की लंबाई करीब 1.5 मीटर है तो उसको जमीन में गाड़ते समय उसका नीचे का करीब 50 सेंटीमीटर हिस्सा वो गड्ढे में होना चाहिए। कटिंग से ऐसा भी कर सकते हैं किसान भाई, कटिंग को काट के उसको बड़े पॉलिथीन बैग में उसको लगा दें जैसा मिश्रण मैंने बताया, उसके बाद 3-4 महीने तक उसको जो है रहने दें, पानी देते रहें, उसका सेवा करते रहें, उसमें रूट फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद भी उस कटिंग को पॉलिथीन बैग से निकाल के वो डायरेक्ट गड्ढे में प्रतिरोपित कर सकते।
1: अच्छा, तो ऐसे में मतलब स्थापित होने की जो संभावना है ज्यादा हो जाएगी,
0: 100% सर्वाइवल होगा उसमें।
1: अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि इसमें अगर अंकुरण कराकर भी पॉलिथीन बैग में डाल सकते
0: जी,
1: तो इसमें खाद उर्वरक वगैरह कैसे प्रयोग?
0: जैसा है जब पॉली बैग की पौध अंकुरण के बाद लगभग 60 दिन की हो जाए तो उसकी ताजी कटिंग जो है काट कर उसे पौध से पौध और पंख से पंख की दूरी करीब 5 मीटर रखते हैं और 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा व 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाकर प्रत्येक गड्ढे में करीब 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद डालकर मिट्टी में भली भांति मिला देते हैं और गड्ढे को भर देते हैं। उसके बाद जब मानसून शुरू हो जाए जैसे जून जुलाई के महीने में अगस्त तक के बीच में पौध या कटिंग प्रतिरोपित करते हैं। अगर सूखे का मौसम है तो प्रतिरोपण के तुरंत बाद सिंचाई कर दे। और जहां तक इस पेड़ के लिए खाद और उर्वरकों का सवाल है, क्योंकि यह एक कठोर पेड़ है और थोड़ी ही देखभाल से अच्छी पैदावार देता है, तो इसलिए किसान भाई को इसमें 1 वर्ष के पुराने पेड़ को जून जुलाई में जब मानसून का सीजन रहता है प्रतिवर्ष लगभग 75 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद और करीब 250 ग्राम यूरिया प्रति पेड़ के हिसाब से 1 मीटर 1.5 मीटर का बेसिन बना के उसमें जो है प्रयोग करें ताकि डायरेक्ट उसके जड़ में जो है उसका केमिकल जो रासायनिक खाद है उसका प्रभाव न पड़े।
1: और हमारे द्वीपों में चूंकि जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है तो अब गोबर की कंपोस्ट,
0: वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी पत्ती की खाद का इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल जी। तो सहजन फली के पेड़ों में जैसे आपने कहा कि अगर सूखा मौसम है तो सिंचाई के बारे में जरा किसानों को बताएं।
0: जी, ऐसा है जहां तक सिंचाई का सवाल है, पहले वर्ष में 10-15 दिन के अंतर पर सूखे का मौसम होने पर सिंचाई कर दें। और अगर मान लीजिए किसान भाई के पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है तो सॉयल मल्चिंग कर सकते हैं। सॉयल मल्चिंग क्या करते हैं कि पेड़ के चारों तरफ 1 मीटर के डायमीटर में करीब 6 इंच मिट्टी को लूज कर देते हैं स्पेड से खोद के, पातों से खोद के। तो क्या होता है, ऊपर की जो हीट है सूर्य की वो हीट जो है बिल्कुल नीचे नहीं जा पाती, जो नीचे जो नमी होती है नमी बराबर बनी रहती है। उसमें चाहे तो सॉयल मल्चिंग करने के बाद खरपतवार से भी मल्चिंग कर सकते हैं जी। और वर्ष में कम से कम 1 बार बेसिन से खरपतवार निकालकर जो खाद और उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए मैंने बोला था उस प्रकार करें। और जहां तक कीड़े एवं बीमारियों का सवाल है, सहजन फली के पेड़ में इन द्वीपों में कोई खास कीड़ों एवं बीमारियों का प्रकोप नहीं देखा गया है। और अगर बरसात के मौसम में पत्तियों पर किसी प्रकार का कैटरपिलर का प्रकोप अगर होता है तो 2 मिलीलीटर मोनोकोटोफास को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।

0: दिन के अंतर पर।
1: तो डॉक्टर साहब, सहजन फली की जो फलियां होता है
0: जी
1: कि बाजार में मांग होता है, लोग खाते हैं, तो उसकी तुड़ाई पर भी कुछ खास ध्यान देना होगा।
0: आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ऐसा है, कटिंग से लगाए गए पेड़ लगभग 6 से 8 महीने में पहले 2-3 सीजन में करीब 80 से 90 फली तक ही पैदावार दे पाते हैं, तथा जब 2 साल के बाद वही पेड़ जब पुराना हो जाता है तो 300 से 400 फली प्रति पेड़ जो है प्रतिवर्ष में पैदावार देते हैं। जहां तक तोड़ने का सवाल है, जब सहजन फली के पेड़ पर फली गहरे हरे रंग के साथ 1 सेंटीमीटर डायमीटर की हो जाए तो उसी समय उसे तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत अच्छा खाने का वो फली का ये होता है।
1: बिल्कुल, आपने
0: जी
1: बताया कि बहुत सारी बातें बताई, इन पर
0: जी
1: ध्यान रखकर अगर किसान भाई सहजन फली उगाएं तो
0: जी
1: उत्पादन कितना मिल सकता है, आप लोगों ने क्या कहा है?
0: जी ऐसा है, अगर किसान भाई इस प्रकार केयर करके अगर इसका करें तो आपको जो है 1 टेयर से 50 से 55 टन प्रतिवर्ष तक जो है उपज प्राप्त कर सकते हैं, और एक पौधे से जैसा मैंने बताया कि 300 से 400 या 500 तक भी
1: फली मिल
0: उपज प्राप्त
1: सकते हैं।
0: कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो है इतना कास्ट ज्यादा होता है 12 महीना सहजन फली का मार्केट में, तो यह जो है खेती जो है बहुत फायदेमंद है, और इसके लिए जो है बहुत कम पूंजी और मेहनत की जरूरत पड़ती है। इन द्वीपों में किसान भाई सहजन की खेती करके लाभ कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो जैसे आपने बताया कि सहजन फली की खेती अगर वैज्ञानिक तरीके से करें
0: जी
1: और किस्मों को ठीक तरह से चुनें,
0: जी
1: हाल भी थोड़ी बहुत करें,
0: थोड़ी
1: तो
0: बहुत करें तो
1: अच्छा खासा
0: बहुत अच्छा
1: मुनाफा।
0: खासा फायदा ले सकते हैं किसान
1: बिल्कुल,
0: भाई।
1: तो
0: जी
1: डॉक्टर पांडे, आज आप कार्यक्रम में और आपने इतनी सारी बातें किसानों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे द्वीपों में सहजन फली की खेती के संदर्भ में डॉक्टर विश्वभूषण पांडे से की गई यह खास बातचीत। उम्मीद है इस जानकारी से हमारे द्वीप समूह के किसान भाई बहन कम लागत में बेहतर मुनाफा कमा सकेंगे। किसान साथियों, अच्छी फसल के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत आवश्यक है। मिट्टी की सेहत अच्छी रहेगी तो फसल भी हमारा अच्छा रहेगा। तो साथियों, आइए सुनते हैं मिट्टी से जुड़ी कुछ खास जानकारी। मिट्टी की सेहत फसल की सेहत। किसान साथियों, फसल बोने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश कितना है ये पता होगा तो खाद भी उतनी ही लगेगी। ज्यादा खाद से खर्च बढ़ता है और मिट्टी खराब होती है। कम खर्च में ज्यादा पैदावार का यही रास्ता है। पानी बचाओ, ड्रिप और स्प्रिंकलर अपनाओ। पानी है तो खेती है। ड्रिप सिंचाई से 50% पानी बचता है और फसल 20% ज्यादा होती है। सरकार ड्रिप पर 50% तक सब्सिडी भी दे रही है। एक बार लगाओ, 5 साल तक फायदा लो। बीज का चुनाव सही हो तो आधी मेहनत कम लगती है। हमेशा प्रमाणित बीज ही ले। HYV और रोग रोधी बीज की पैदावार देसी बीज से दोगुनी होती है। बीज को बुआई से पहले फफूंद नाशक से उपचारित जरूर करें। बीमारी शुरू से ही खत्म हो जाएगी। एकीकृत खेती, कम जोखिम ज्यादा आमदनी। सिर्फ गेहूं धान पर निर्भर मत रहिए। खेती, पशुपालन, सब्जी, मछली पालन, अगर एक में नुकसान भी हुआ तो दूसरे से भरपाई हो जाएगी। इसे ही कहते हैं स्मार्ट खेती। सरकारी योजनाओं का लाभ ले। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, KCC कार्ड, इन सब का फायदा जरूर उठाए। समय पर प्रीमियम भरिए। नुकसान पर क्लेम जरूर कीजिए। जानकारी रखोगे तो ठगोगे नहीं। किसान साथियों, सेहत की मिट्टी से ही फसल की सेहत बनती है, इसलिए मिट्टी जांच कराना बिल्कुल मत भूलिए। साथियों, अभी आप जानकारी सुन रहे थे। किसान साथियों, आइए सुनते हैं एक और गीत।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान साथियों, कार्यक्रम के अंत में चलते चलते उस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था। प्रश्न था, मागुर एक वायु श्वासी मछली है या नहीं? और इसका सही उत्तर है, मागुर एक वायु श्वासी मछली है। उम्मीद है कि इस बात की जानकारी थी, यदि नहीं तो इस प्रश्नोत्तर के माध्यम इस बात की जानकारी हो गई होगी। साथियों, आपकी मेहनत से ही देश चलता है। आप स्वस्थ रहे, आपके खेत हरे भरे रहे और आपकी फसल हमेशा सोना उगाए, इसी कामना के साथ आज के कृषि जगत को यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई तकनीक और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आपकी दोस्त रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संजोग से। मुकेश की आवाज़ में गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की तथा संगीत दिया है मदन मोहन ने।

अब प्रस्तुत है फिल्म जीरो का गीत। गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं ज्योति नरून और राहत फ़तेह अली खान ने। इसके बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है नुसरत फ़तेह अली खान ने।

तलत महमूद की आवाज़ में सुनिए फिल्म मदहोश का गीत। गीत रचना राजा मेहदी अली खान की और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

क्रिकेटर श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत। भूपेंद्र की आवाज़ में साफ़ी हसन के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है DCS ने।

श्रोताओं, अब सुनिए योगेश का लिखा व निखिल विनय की संगीतबद्ध में बेवफा सनम फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रामू तो दीवाना है का गीत मुबारक बेगम की आवाज़ में, जिसे लिखा है और संगीत दिया है चंद्रू ने।

अब से कुछ ही देर बाद मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएँ दी जाएगी 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय होगा 7:20 पर। सात बजकर 30 पर युवानी के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए रात 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार व गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे न्यूज़ एट 9, रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर चर्चा का विषय और रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम आप सुन पाएंगे। जबकि FM 100.9 MHz पर रात 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाली आज के शेष कार्यक्रम।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले

बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: स्वच्छ गांव स्वस्थ जीवन, आइए मिलकर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। गीला सूखा सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरे को 4 भागों में अलग करें। कचरा न जलाएं, न इधर उधर फेंकें। अधिक जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-2739 पर संपर्क करें। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रम्बनन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की संरक्षण परियोजना को ऐतिहासिक बताया। तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल ने साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। द्वीप समूह में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कर्माटांग और वेबी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अंडमान निकोबार ओलंपिक संघ ने इस महीने राजधानी श्री विजयपुरम में होने वाली जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम जारी किया। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बनन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का अवलोकन किया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्राबोवो ने कहा कि प्रम्बनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्वार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रम्बनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे भारत के सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
3: के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
2: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। आज प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए 2 नए फायर टेंडरों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को डिजिटल फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच का प्रशिक्षण प्रदान करेगी। उपराज्यपाल श्री जोशी ने तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने और कर्मियों के कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यह प्रयोगशाला वैज्ञानिक जांच, आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण में सहायक होगी। नए फायर टेंडर आधुनिक अग्निशमन प्रणालियों से लैस है, जो आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई और बेहतर प्रतिक्रिया क्षमता सुनिश्चित करेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और खेल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीपों में सतत कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग मायाबंदर ने यूटी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी तथा कृषि विज्ञान केंद्र निम्बुडेरा के सहयोग से पिछले दिनों कर्माटांग और वेबी क्लस्टर में केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में KVK निम्बुडेरा के प्रमुख डॉ वाई रामकृष्ण ने कहा कि प्राकृतिक खेती मिट्टी की उर्वरता और दीर्घकालिक कृषि स्थिरता सुनिश्चित करती है। कृषि अधिकारी शमना सलाम ने कहा कि कर्माटांग और वेबी के किसान रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करते हैं, लेकिन जैव आधारित इनपुट अपनाकर मिट्टी की सूक्ष्म जीव सक्रियता बढ़ाई जा सकती है तथा पारंपरिक धान की घटती उत्पादकता में सुधार लाया जा सकता है। व्यावहारिक सत्र में ATMA कर्मियों ने जुवा मृत्यु और निमास्त्र जैसे जैव इनपुट तैयार करने एवं उपयोग का प्रदर्शन किया। सभी पंजीकृत किसानों को प्राकृतिक खेती किट वितरित की गई, जबकि जैव इनपुट तैयार करने के लिए कर्माटांग और वेबी क्लस्टर के किसानों को 250 ड्रम भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में 90 किसानों, कृषि सखियों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। अंडमान एवं निकोबार राज्य ओलंपिक संघ ने इस महीने के दौरान श्री विजयपुरम में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रतियोगिताओं का आयोजन संबंधी संबद्ध खेल संघों द्वारा किया जाएगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार जिला योग्य चैंपियनशिप तथा दक्षिण अंडमान जिला तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन 11 एवं 12 जुलाई को किया जाएगा। इन दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई है। दक्षिण अंडमान जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप 18 एवं 19 जुलाई को आयोजित होगी। अंतिम तिथि 16 जुलाई है। इच्छुक खिलाड़ी अपनी प्रविष्टियां गूगल फॉर्म के माध्यम से भर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक तथा प्रतियोगिताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए खिलाड़ी संबंधित प्रतियोगिता के नामित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय श्री विजयपुरम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत स्किल हब के माध्यम से निशुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। सीमित सीटों वाले इन पाठ्यक्रमों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महाविद्यालय में डिजिटल मित्र, एडवेंचर ट्रैवल गाइड और अकाउंट्स असिस्टेंट पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई तथा एडवेंचर ट्रैवल गाइड के लिए 15 जुलाई निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्किल इंडिया ट्रेनिंग सेंटर JNRM में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए

9679563418 पर संपर्क किया जा सकता है। पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने संविदा आधार पर सलाहकार पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूरी तरह संविदा आधार पर की जाएगी। चयनित सलाहकार को पर्यावरण प्रभाग आकलन रिपोर्ट तथा तटीय विनियमन क्षेत्र से संबंधित परियोजना प्रस्तावों के अन्य दस्तावेजों की जाँच से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप और अन्य नियम एवं शर्तें पर्यावरण एवं वन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। आवेदन संबंधी जानकारी के लिए ईमेल apccf-crzfc.an@andand.nic.in पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रम्बनन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की संरक्षण परियोजना को ऐतिहासिक बताया। तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल ने साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। द्वीप समूह में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कर्माटांग और वेबी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अंडमान निकोबार ओलंपिक संघ ने इस महीने राजधानी श्री विजयपुरम में होने वाली जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:15 हुए हैं। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV नॉर्थ पैसेज लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV सेंटिनल लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कच्चाल ननकौरी मकाचुआ और अफ्रा बे होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी रविवार 12 तारीख को रात्रि 9 बजे कैम्बल बे से उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 12 बजे रंगत से लॉन्ग आइलैंड और स्वराजद्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।

बाराटांग सुराजदीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी शुक्रवार 10 तारीख को सवेरे 5:30 पर सुराजदीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। अभी आप जलियानो का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। जनसूचनाएं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैरकानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 0319224 0127, 0319223888 या 1070। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जनसूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुंडे से, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी के स्वर में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है सोहेल सेन ने।

अब आपको सुनवाते हैं आर राजकुमार फिल्म का गीत। आशीष पंडित के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने, और स्वर अंतारा मित्रा की है।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, प्रकृति हमें हर दिन बिना किसी अपेक्षा के जीवन का सबसे अनमोल उपहार देती है। उगता हुआ सूरज हमें नई शुरुआत का संदेश देता है। बहती हुई नदियाँ निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। विशाल पर्वत कठिनाइयों के सामने अडिग रहने का साहस सिखाते हैं और पेड़ निस्वार्थ भाव से देना सिखाते हैं। प्रकृति कभी शब्दों में उपदेश नहीं देती, फिर भी उसका हर दृश्य जीवन का एक गहरा पाठ होता है। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, आज बुधवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

दोस्तों, एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में वर्षों पुराने बरगद, पीपल, नीम, आम और साल के विशाल वृक्ष खड़े थे। गांव के लोग उन्हें केवल पेड़ नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उन्हीं पेड़ों की छाँव में बच्चे खेलते, बुजुर्ग विश्राम करते और पक्षी अपने घोंसले बनाकर मधुर गीत गाते थे। समय बीतता गया और गांव की नई पीढ़ी आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति से दूर होती चली गई। अब उन्हें पेड़ों की ठंडी छांव से अधिक पक्की इमारतें और चौड़ी सड़कें आकर्षित करने लगी। गांव में आरव नाम का एक किशोर रहता था। बचपन में उसकी दादी उसे अक्सर जंगल में ले जाती थी और कहती थी, बेटा, पेड़ हमें बिना किसी स्वार्थ के जीवन देते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए फल, रहने के लिए लकड़ी, दवाइयाँ और सबसे बढ़कर शुद्ध वातावरण देते हैं। लेकिन समय के साथ आरव भी इन बातों को भूल गया।

दोस्तों, एक दिन गांव में एक बड़ी कंपनी आई। उन्होंने गांव वालों से कहा कि यदि जंगल का कुछ हिस्सा काट दिया जाए तो वहां एक बड़ा कारखाना बनेगा जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। कई लोग इस प्रस्ताव से खुश हो गए। पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। धीरे धीरे जंगल का

हरा भरा रूप उजड़ने लगा। पक्षियों ने अपने बसेरे छोड़ दिए, जानवर भटकने लगे और गर्मी पहले से कई अधिक बढ़ गई। गांव का तालाब, जो कभी पूरे साल पानी से भरा रहता था, अब सूखने लगा। खेतों की मिट्टी भी बंजर होने लगी।

दोस्तों, एक रात आरव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल बरगद का पेड़ उससे कह रहा है, जब तक हम थे तुम्हारे गांव में जीवन था, हमारी जड़ों ने मिट्टी को संभाला, हमारी शाखाओं ने बादलों को रोका और हमारी पत्तियों ने तुम्हें स्वच्छ हवा दी। यदि हम नहीं रहे तो तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सुबह उठते ही आरव बेचैन हो गया। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और जंगल की पुरानी तस्वीरें देखी। उसे एहसास हुआ कि विकास और प्रकृति का संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया, एक पेड़ एक जीवन। वे घर घर जाकर लोगों को पेड़ों का महत्व समझाने लगे। स्कूल में रैली निकाली गई, बच्चों ने पौधे लगाए और हर परिवार ने कम से कम एक पौधे की देखभाल करने का संकल्प लिया।

दोस्तों धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। पंचायत ने फैसला किया कि बिना आवश्यकता किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा। जहां पेड़ काटना अनिवार्य होगा, वहां कई नए पौधे लगाए जाएंगे। कंपनी ने भी अपनी योजना में बदलाव किया और कारखाने के आसपास बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने का वादा किया। दोस्तों कुछ वर्षों बाद वही गांव फिर से हरियाली से भर गया। पक्षियों की मधुर आवाज लौट आई, तालाब में पानी भरने लगा और खेत फिर से लहलहाने लगे। गांव के लोग समझ चुके थे कि सच्ची समृद्धि केवल इमारतों से नहीं बल्कि प्रकृति के संरक्षण से आती है। आरव को गर्व था कि एक छोटे से प्रयास ने पूरे गाँव की सोच

दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि पेड़ केवल प्रकृति की शोभा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। यदि हम आज एक पेड़ बचाते हैं या एक नया पौधा लगाते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित भविष्य का उपहार देते हैं। प्रकृति की रक्षा करना केवल हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

तो दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दूरियां से। भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में गीत रचना सुदर्शन फकीर की तथा संगीत दिया है जयदेव ने।

अब प्रस्तुत है फिल्म मुकद्दर का सिकद्दर का गीत। गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और प्रकाश मेहरा ने, इसके बोल लिखे हैं राखी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

रूना लैला की आवाज़ में सुनिए फिल्म घरौंदा का गीत। गीत रचना नक्श लालपुरी की और संगीत से सजाया है जयदेव ने।

श्रोताओं, आप सुनिए योगेश का लिखा हुआ राजेश रोशन की संगीतबद्ध में बातों बातों में फिल्म का गीत आशा भोसले और अमित अमित कुमार की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कभी कभी का गीत, गीत रचना शाहिर की और संगीत से सजाया है खय्याम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता सिविल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 7 पदों को प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में समान एनालॉगस पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक्स के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट ए पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडेटा 2 प्रतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, पिछले 5 वर्षों की APAR अथवा ACR प्रतियां भी लगानी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, सचिवालय कक्ष संख्या 139, श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, अब गौरव गान के तहत आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, गौरवगान के तहत अभी आप देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्रिकेट एक दिन छूट जाना है, 15 साल भारत के लिए खेले वो वापस नहीं आएगा। वो सेटिस्फेक्शन अलग ही है जब तुम एक तेज गेंदबाज को कवर ड्राइव मारते हो ना, जब बॉल बीच में लगता है और कवर और मिड ऑफ के बीच से जाता है और सारे ताली मारते, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितने भी आप काम कर लो, जितने भी बड़े बन जाओ, जितने भी पैसे कमा लो, वो वापस नहीं आएगा।
1: से विदा लेने का कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्रुक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री

0: एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र

0: महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
2: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
3: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जैस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के

0: 12:30 स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
2: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
1: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार,
3: धन्यवाद।
1: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
2: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती है, वीक पड़ जाती है। जब ये वीक हो जाती है तो क्या होता है, जो पानी था वहां जो उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां

0: कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है, और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है, और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलनीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलनीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलिनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है जितने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही हैं, तो ये ठीक है। मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता है तो ये सुपर एलिनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे, और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है, जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसलीय खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा, जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां, मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है, मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा, जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी

0: एक्टिव एग्रीकल्चर में उनके जरिए भी जाता। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब बारिश नहीं होगी, कम होगी, तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज पे हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज, नहीं,

0: वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
1: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको। सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी, तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
0: प्रभावित होंगे,
1: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2000 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ, तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहना मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंगली, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है
0: जी,
1: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
0: जी,
1: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब बताया कि भाई एलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती, आप देख लीजिए वहाँ पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहाँ पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
0: जी,
1: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया वर्षा तो सामान्य है सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
0: जब जरूरत थी तो नहीं मिली।
1: तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज के इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको

0: 5 हफ्ते परेशान मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। आज इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल। तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है। और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए। तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं, जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्ट

0: की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें यह भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी। लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है, क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा, तो वो एक बड़ी अच्छी बात हो। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है, और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, उसको वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूं ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है, तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए। और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशल माइल कनेक्टिविटी, यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत।

0: जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में. आपने सोइंग तो कर दी और बाद में वो एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा. तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं. वेन टू सो, वेन टू हार्वेस्ट, वेन टू इरीगेट, हाउ मच टू इरीगेट, वेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है. तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है. और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान को प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है. एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा. और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले. और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी.
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो?
2: नहीं, देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरीगेशन है. मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरीगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है. तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन हैं वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है. दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए. उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है. लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है. तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है? पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है. और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है, कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है, कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सेप्टेम्बर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है. अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी. और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है, या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है, और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहां उसको मदद करने की जरूरत है. और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं, और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं. तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं.
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी, और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा. विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है. जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें. आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार.
0: धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए. नमस्कार.
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इसका

0: कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब पेश है आपके भरपूर मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिशन कश्मीर से। शंकर माधवन और जसपिंदर नरूला की आवाज़ों में, गीत रचना राहत इंदूरी की तथा संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

अब प्रस्तुत है फिल्म अजनबी का गीत। गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और सुनिधि चौहान ने। इसके बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनिए फिल्म चलो इश्क लड़ाएं का गीत। गीत रचना समीर की और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

ये दिल आशिकाना। श्रोताओं सुनिए, इस फिल्म का गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं सोल्जर फिल्म का गीत। जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज़ों में, गीत रचना समीर की और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:31 होने वाले हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

अनमोल विचार। जीवन में गलती होना स्वाभाविक है, परंतु वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और उसे दोहराने से बचता है। गलती हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर बनाने का अवसर देने के लिए होती है। अपनी भूलों से सीखने वाला व्यक्ति निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अपनी गलतियों से सीखें, उन्हें सुधारने का प्रयास करें और सदैव सत्य, विनम्रता तथा आत्म सुधार के मार्ग पर चलें।